0: ये है लाइका रेडियो सी टीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk exclusive radio partner like our radio
1: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
2: Listen back to your favorite shows by logging on to likearadio.com and selecting Midlands or the mobile app. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: This is Leica Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Your favorite show on Leica Radio Midlands. You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations.
4: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales on 01164710697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर।

मन बुद्ध मन्ने सगल पौन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

0: लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी लाइका रेडियो नेटवर्क Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hit. 7 stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: थैंक यू हनी थैंक यू.
1: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
0: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली,

0: ये है लाइका रेडियो।
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
2: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल।
4: फोन 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
6: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है। I'm Dr. संदीप चक्रवर्ती, owner psychiatrist.
7: One more gruesome murder.
5: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल। He's not going to stop. There are many more in danger.
8: Karishma Kapoor in and as Brown now streaming on Hindi Z5.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
12: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
11: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
12: Or sales at leicamedia.co.uk.
13: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.

0: ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ laikaradio.com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ.
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी.
4: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
3: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
4: दिल तो टूट पे किया,
3: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
5: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
3: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave. Your wake-up call. This is Carl.

0: हाँ, ये सुहाना सफर भाई रफी साहब की आवाज में भी है ये गीत, लेकिन इस वक्त आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर के स्वर में। सुहाना सफर फिल्म का गीत, 1970 की फिल्म थी। भाई देखिए, जिंदगी का सफर जो है ना, कुछ लोगों की तो समझ में नहीं आता, वो कहती हैं कि कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये, कैसा सफर। पर कुछ लोग इसे सुहाना सफर बताते हैं और कुछ लोग जिंदगी क्या है, गम का दरिया है। भाई अपने अपने अनुभव के अनुसार जिंदगी को टाइटल देते हैं वो, लेकिन साहब संगीत में अगर इसको ढाल लिया जाए और भाई कुछ सुरीले लोगों के साथ चला जाए तो ये जिंदगी का सफर सुहाना सफर है। टिकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा ये सुहाना सफर। सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, और इससे पहले प्रोग्राम का जो आगाज हुआ, जो शुभारंभ हुआ कार्यक्रम का, वो हुआ फिल्म हिना के गीत से, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, समय पर पहुंच जाए। तो साहब बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए हम आ गए यहाँ। बता दूं कि करीब 10:30 बजे यानी आपसे थोड़ी देर बाद हम आपको आज के दिन के प्रमुख समाचार सुनवाएंगे, और बहन भाइयों 11 बजे की खबरों के बाद होगा थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन, और दोपहर बाद 1 बजे तक आपका और रवि शर्मा का ये सुहाना सफर जारी रहेगा गीतों के साथ, बातों के साथ। राइट नाउ लेट्स फाइंड आउट द पाउंड्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडियन करेंसी, क्या भाव चल रहा है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK कहते हैं भाई रेट तो अच्छा चल रहा है, अगर आपने अभी तक पैसे नहीं भिजवाए हैं भिजवाइए भाई अपनों को। टुडेज रेट 1 pound कैन गेट यू मैक्सिमम 127.3 इंडियन रुपीज, 127.30 रुपए का रेट चल रहा है। लेकिन डोंट फॉरगेट, सेंड मनी टू इंडिया वाई SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड यू हैव अ चांस टू विन 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds, ऑल्सो ए 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds. TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 Assistant Street LE12JU या Rowlatt Hill LE54UN.
2: Big deals, big savings while stocks last.
4: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
5: Discover Kailash Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
4: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
5: Also explore 2026 cruises
4: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
6: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक।
7: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी,
6: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज। 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 2:30 वागे अने सांजे 7 वागे। टिकट बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655, मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June. June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
2: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
9: in Dubai.
10: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan mandir na grand opening ma darshan no labh. Aap pavitra yatra ma jodao apna parivar sathe. Jyan madshe shanti, bhakti ane anand. Ane sathe Eiffel Tower, Seine River Cruise ane Paris City Tour no anand mano. Departure 5 September na Mantra Holidays. Call karo 0203-773-6333. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
12: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
13: Ye hai like a gold.

वेरी गुड मॉर्निंग, लौट आइए संगीत की दुनिया में और सुनिए स्वर्गीय मुकेश जी का स्वर। भाई मुकेश जी वैसे तो दर्द भरे गीत गानों के लिए बड़े मशहूर हैं, उनकी आवाज बहुत सूट करती है ऐसे सैड सॉन्ग्स के लिए, लेकिन कुछ मस्ती भरे नगमे भी भाई सुपर हिट हुए हैं उनकी आवाज में।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
3: वेरी गुड मॉर्निंग. और भाई हमें पता है कि हमारे श्रोता मनोरंजन कहाँ ढूंढते हैं, फिल्मी कहानियों में, फिल्मी गीतों में, और इसके अलावा क्रिकेट में भी बहुत सारे श्रोताओं की दिलचस्पी रहती है. तो भाई बता दे, क्रिकेट की भी एक न्यूज़ आज समाचारों में शामिल है. लेकिन जो लाइव मैच चल रहे हैं, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत चल रही है इस समय, और बांग्लादेश ने 50 ओवर में 284 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे. ऑस्ट्रेलिया अभी जवाब देने के लिए मैदान में उतरने वाली है. इंग्लैंड लायंस और साउथ अफ्रीका के बीच मैच चल रहा है. श्रीलंका की ए टीम का ट्राई सीरीज में भारत की ए टीम के साथ मुकाबला है. तो ऐसे भाई विमेन क्रिकेट का भी जो है वो सिलसिला चल रहा है. आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस चल रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले के, तो भाई उनके भी स्कोर सामने आ रहे हैं. लेकिन क्रिकेट से, भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी यह खबर आज की खबरों में शामिल है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दैट. लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए. खास खबरों में, इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि बहुत जल्द ईरान के सामने आप अकेले पड़ सकते हैं. भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं नेतन्याहू को जो करने के लिए कहता हूं वो उसे कर देते हैं, मान लेते हैं. और अमेरिका H-1B वीजा के लिए $1,00,000 की फीस को कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है. डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया है कि ये जज कुछ करने नहीं दे रहे हैं मुझे. लेकिन पहले क्रिकेट से जुड़ी यह खबर, आयरलैंड और इंग्लैंड की टी20 मैचों से बाहर हुए मोहम्मद सिराज. क्यों भाई? कारण भाई, खिलाड़ियों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हों और आगे जो बड़े मैच आ रहे हैं उनके लिए फिट रहें, इसलिए उन्हें हटाया गया. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बड़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से उन्हें हटा लिया गया है. अब उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है. दरअसल BCCI की मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट के बीच बातचीत के बाद सिराज को आराम करने की सलाह दी गई है. ईरान की वार्निंग के बावजूद इजराइल ने लेबनान के तायर शहर के लिए जारी किया एक आदेश. इजरायली रक्षा बल सिक्योरिटी फोर्स ने दक्षिणी लेबनान के शहर तायर के लिए तत्काल निकासी आदेश जारी किया है. इसराइल ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब एक दिन पहले ईरान ने कहा था कि वो इसराइल पर हमले रोक देगा, अटैक रोक देगा. लेकिन इसके साथ ही वार्निंग भी दी थी कि अगर इसराइली फौज दक्षिणी लेबनान में हमले करती है तो उसका रिएक्शन कड़ा होगा, सख्त होगा. इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल मंडे को कहा कि उनका देश फिलहाल ईरान पर हमला नहीं करेगा. लेकिन उन्होंने वार्निंग भी दी कि अगर ईरान फिर वही गलती करता है और हम पर अटैक करता है तो हम भी जोरदार जवाब देंगे. सिलसिला चल रहा है. अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक फेडरल जज की ओर से H-1B वीजा के लिए $1,00,000 वाली फीस को गैर कानूनी करार देने के फैसले पर रिएक्ट किया है. ट्रंप ने कहा कि ये फेडरल जजेस जो है ना, वास्तव में हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं. कोर्ट सिस्टम में जो कुछ हो रहा है वो सचमुच हैरान करने वाला है. ये फेडरल जजेस जो हैं हमारे मुल्क को यानी अमेरिका को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं. भारत से आने वाली खबरों में, तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की अध्यक्षा ममता बनर्जी ने पार्टी के नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ व्हिप नियुक्त किया, अपॉइंट किया है. कल्याण बनर्जी की अपॉइंटमेंट के संबंध में ममता बनर्जी ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला को एक चिट्ठी लिख दी है. भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर के एक बयान जारी किया है. कल मंडे को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को लेकर भारत की प्रतिक्रिया आई है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हरीश पार्वधनिनी ने कहा कि अपने ही देश के भीतर एक्टिव ग्रुप्स को फितना अल हिंदुस्तान कहने का पाकिस्तान का फैसला आधिकारिक तौर पर प्रायोजित दुष्प्रचार है, बुरा प्रचार है। पाकिस्तान प्रांत में एक्टिव सभी आतंकवादी ग्रुप्स और संगठनों को आधिकारिक तौर पर फितना अल हिंदुस्तान घोषित किया था। तुम्हारे देश के ग्रुप्स हैं, तुम्हारे देश में एक्टिविटीज, फितना अल हिंदुस्तान नाम देने का भाई रीजन। भारत ने इस बात को लेकर के पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। शी जिनपिंग का बयान। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उत्तर कोरिया के 2 दिन के दौरे पर हैं। 2019 के बाद ये उनका उत्तर कोरिया का पहला ऑथेंटिक भाई दौरा है, यात्रा है उनकी। कल सोमवार की सुबह राजधानी प्योंगयांग पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में शी और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच शिखर बैठक हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वार्निंग दी है कि अगर ये टेंशन बढ़ती रही ना तो वो जल्द ही ईरान के मामले में अलग थलग पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। ट्रंप ने ये बात इजरायल के चैनल 12 को दिए एक इंटरव्यू में कही है। इजरायली न्यूज एजेंसी ने कल मंडे को बताया कि नेतन्याहू ने संडे को ईरान पर हमला करने के अपने अंतिम फैसले के बारे में ट्रंप को योजना के अंतिम स्टेज तक जानकारी नहीं दी थी। संडे को ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि वे ईरान पर जवाबी हमले करने से बचें, यानी अपने आप को रोकें। और H-1B वीजा के लिए $1,00,000 की फीस वाली जो भाई प्रतिक्रिया थी, जो फैसला था डोनाल्ड ट्रंप का, उसे कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। अमेरिका उस पॉलिसी को गैर कानूनी ठहराते हुए रद्द कर दिया, जिसके तहत हाई स्किल्ड विदेशी कर्मचारियों के लिए नए H-1B वीजा पर $1,00,000 की फीस लगाई गई थी। अमेरिकी जिला जज लियो सोरोकिन ने अपना फैसला 20 राज्यों के पक्ष में सुनाया। इन राज्यों ने सितंबर में ट्रंप की ओर से घोषित की गई, लागू की गई फीस को चुनौती दी थी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है Leica Radio Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles।
3: और आइए अब जर्नलिज्म की दुनिया से निकल करके एंटर करते हैं संगीत जगत में, और इसमें है पायल की झनकार और चूड़ियों की खनकार, लेकर आ रही है साधना सरगम और सखियां। एंजॉय द म्यूजिक, दिस इज लाइका रेडियो नेटवर्क। आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका गोल्ड विद रवि शर्मा। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।

आशा भोसले मोहम्मद रफी गा रहे हैं गीत, भाई संगीत में कुछ बदलाव ला रहे हैं। जी नहीं, वो कहते हैं ना तुम बदलोगे ना हम बदलेंगे, भले ही चाहे सारे मौसम बदलेंगे।

0: Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: वेरी गुड मॉर्निंग भाई. आज सुबह सुबह थोड़ी बहुत जो धूप देखने को मिली, कहते हैं दैट विल बी रिप्लेस बाय वेरिएबल क्लाउड्स, और उसके बाद बारिश की बौछारें, बूंदाबांदी, ये सब जो है वो आज के मौसम में शामिल हैं. कुछ एक हैवी रेन भी भाई प्रेडिक्ट की गई हैं, और इसके अलावा आज शाम तक जो है ये ऐसा कई बार होगा. मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में 18 डिग्री सेल्सियस और मिडलैंड में 16 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.
0: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कॉल साउथऑल ट्रैवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0208 574 8410.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.

थॉट फॉर द डे, आज का विचार। लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये लाइका गोल्ड का मनोरंजन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है रवि शर्मा और बहन भाइयों, मैं ये कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूँ। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं। अगर आपने रेडियो अभी सुनना शुरू किया है तो भाई 1 घंटे का कार्यक्रम आप मिस कर चुके हैं। 10 बजे से 1 बजे के बीच होता है मनोरंजन और मैं भाई इस बीच इंतजार करता रहता हूँ कि आप जुड़ेंगे मेरे साथ, तो मैं कुछ और जानकारी, कुछ और बातें, कुछ और मीठे मीठे गीत परोसूंगा। लीजिए साहब, शुरू करते हैं आज का चिंतन, आज का विचार। भाई वैसे तो आज हमारे एक मेहमान जुड़ने वाले थे हमारे साथ, पर वो उपलब्ध नहीं है, और जैसे ही वो उपलब्ध होंगे यानी अवेलेबल होंगे तो हम उनकी आवाज में उनका संदेश भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन राइट नाउ हमारे वेम्बली में है अर्जुन लाल शर्मा जी, उनका आलेख शामिल करते हैं। और साथ ही भाई साउथ हॉल में राम मंदिर के प्रेसिडेंट जय शर्मा, उनका भी एक संदेश है। तो दोहरा चिंतन प्रस्तुत है आज। आज के दिन के साथ कुछ लोगों का बड़ा क्लोज रिलेशन है भाई। एक तो जब हम जिक्र करते हैं जयंती या पुण्यतिथि का, तो झारखंड में, बिहार में उस समय के एक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़कर शहादत हासिल की। देखिए साहब, कुछ लोग बहुत देर तक जीते हैं और कुछ लोग थोड़ा जीते हैं लेकिन अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, छोटी सी उम्र में ही इतिहास बना जाते हैं। जाते हुए वो बोलकर एक ऐसा सच गया, वो सच हर एक शख्स का चेहरा खुरच गया। मुझको था ये ख्याल कि उसने बचा लिया, उसको था ये मलाल कि ये कैसे बच गया। और कोई तवील उम्र भी यूं ही जिया नसीम, और कोई जरा सी देर में इतिहास रच गया। छोटी सी उम्र में ही भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्होंने फांसी का फंदा चूमा और नौजवानों में एक आजादी के प्रति भाई वो जोश की लहर पैदा कर दी। ऐसे ही एक यंग नेता हुए हैं झारखंड में, उस समय झारखंड नहीं था, बिहार था, बिरसा मुंडा। ये नाम सुना है क्या आपने? अरे साहब, उस इलाके में ये नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ। और पिछले दिनों तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण की, उन्हें याद किया, उनके स्मारक बने। बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में भाई आदिवासियों को लेकर के उन्होंने संघर्ष छेड़ा। आप सोचते हैं भाई आदिवासी लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बहुत विद्वान नहीं, बहुत जागरूक नहीं, लेकिन अपनी आजादी का महत्व वो भी समझते थे और बिरसा मुंडा ने उन्हें समझाया। जरा सोचिए बहनों भाइयों, उनकी बातें, उनके व्याख्यान, उनकी शब्दावली और उनके भाषण सुन सुन करके आदिवासी समाज में एक जागरूकता आई और वो सब खड़े हो गए अंग्रेजी शासन के खिलाफ।

जंगल हमारे, वनस्पतियां हमारी, धरती हमारी, पैदावार हमारी, और ले जाएं अंग्रेज और हम पर हुक्म चलाएं, हम पर डंडे बरसाएं, इसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने लोगों को जागरूक किया तो अंग्रेजों ने उनसे गिरफ्तार कर लिया। अब साहब उम्र देखिए उनकी, 1875 में पैदा हुए थे और साहब 25 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया और जेल में ही उनकी मौत हो गई। बिरसा मुंडा की मौत का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। वो शहीद हुए पर कैसे? लेकिन साहब उनकी मौत ने आदिवासी लोगों में एक जिंदगी भर दी, एक जोश भर दिया आजादी के प्रति। वो तैयार हो गए बिल्कुल भगत सिंह की तरह, जैसे नॉर्थ में भगत सिंह ने लोगों को जगाया। बिरसा मुंडा आज के दिन 1900 में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन मृत्यु नहीं साहब, वो तो जिंदा हुए थे। आज के दिन, आज के दिन वो जन जन में प्रवेश कर गए, हर दिल में एंटर करके उन्होंने वो जोश भर दिया कि वो आजादी की तहरीक बन गया। बिरसा मुंडा को याद करने के साथ साथ भाई उनकी तो आज पुण्यतिथि है, लेकिन आज कुछ जन्मदिन भी हैं। अब जन्मदिन मनाने वालों में कई नाम है फिल्मी दुनिया में, जिनका जिक्र तो बाली भाई भी कर देंगे। सोनम कपूर 1985 में जन्मी थी, अमीषा पटेल 1975 में जन्मी थी, लेकिन फिल्मी हस्तियों में हमारे बैसन साहब याद दिला रहे हैं। आज एक महान संगीतकार का जन्मदिन है जिसने एक संदेश दिया, और फिल्मी दुनिया से, फिल्मी बातों से, फिल्मी संवादों से और फिल्मी संगीत से कई बार संदेश भी निकल करके आते हैं। आज 9 जून को जन्मे थे संगीतकार वसंत देसाई। और साहब वसंत देसाई को उस समय के महान फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर वी शांताराम ने बुला करके कहा कि मेरी एक फिल्म है, उसके लिए एक गीत चाहिए, पर गीत को थोड़ा हटकर चाहिए। कैसा चाहिए? बस आम गीतों से हटकर, ऐसा गीत हो जो फिल्म का हिस्सा ना लगे, हर किसी की जिंदगी का हिस्सा लगे, समाज का हिस्सा बन जाए, फिल्म आके चली जाए लेकिन वो गीत चलता रहे, लोग उसे गुनगुनाते रहें, एक प्रार्थना के रूप में ईश्वर के सामने गाते रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसे अपनाते रहे, ऐसा गीत चाहिए। अब साहब वसंत देसाई साहब संगीत के प्रति समर्पित थे, गीत लिखने की जिम्मेदारी दी गई भरत व्यास जी को। फिल्म का नाम था दो आंखें 12 हाथ, और वी शांताराम ऐसे गीत की तलाश में थे जो प्रार्थना की तरह सीधे लोगों के दिल तक पहुंचे और दिल से निकल करके वो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचे। वो गीत तैयार हुआ बहन भाइयों, फिल्म तो कब की आके चलेगी पर गीत आज भी गुनगुनाया जाता है। वो गीत सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं, हम स्कूल में प्रार्थना गाते थे, वो बरसों तक भारत के अनेक स्कूल्स कॉलेजेस में वो प्रार्थना के रूप में गाया गया, आज भी पॉपुलर है। सीख ये मिलती है इससे कि किसी कार्य में उत्कृष्टता के लिए लोक कल्याण की भावना जुड़ जाए, यानी फेमस होने के लिए आपका टैलेंट काफी है लेकिन फेमस होना नहीं, अगर आप उसको अमर बनाना चाहते हैं, हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसाना चाहते हैं, तो उसके पीछे सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलने का संकल्प होना चाहिए। प्रतिभा आपको पहचान दिला सकती है लेकिन पूर्ण समर्पण, टोटल डेडिकेशन आपको अमर बना देती है। और वो अमर गीत बहन भाइयों, वो प्रार्थना, वो संगीत, ये है, आप कहेंगे कि हाँ ये तो हमने भी गुनगुनाया है, हमने भी गाया है कभी ना कभी।

0: एक ऐसी प्रार्थना जो जात वर्ण आश्रम मत पंथ मजहब धर्म की दीवारों में बंधी हुई नहीं है, सबके लिए सार्वभौमिक, सबकी तरफ से उस परमपिता परमेश्वर के नाम जिन्हें आप किसी भी नाम से पुकारते हो, यह प्रार्थना आप गुनगुना सकते हैं। वसंत देसाई का संगीत, भरत व्यास की शब्द रचना, दो आंखें बारह हाथ, वी शांताराम की फिल्म का ये गीत अमर बन गया भाई। मुझे याद है स्कूल में हम भी गुनगुनाते थे, प्रार्थना में गाते थे, बहुत सारे लोगों ने इसे अपना, और आज भी गाया जाता है। जब किसी गीत के पीछे ऐसी भावना हो कि उसे अमर बनाना है, सबके लिए, सबकी तरफ से, सबके उस ईश्वर के नाम गाया जाना है, तो भाई वो अमर हो जाता है। आज वसंत देसाई जी की कि जन्मदिन के मौके पर हमने ये गीत प्रोग्राम में शामिल किया, ये भजन कहिए इसे आप। और इसके लिए आलेख हमें याद दिलाने में भाई, एक तो हमारे बैसन साहब हैं, देशराज बैसन साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई, जानकारी भिजवाई। लेकिन एक हमारे अर्जुन लाल शर्मा और हमारे जय शर्मा जी, अर्जुन जी वेम्बली में और जय शर्मा साउथ हॉल में, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों, हमारे जिन मेहमान का हम इंतज़ार कर रहे थे, अगर भाई उनसे संपर्क हो पाया तो उनसे भी हम आध्यात्मिक जानकारी और एक बहुत बड़े इवेंट के विषय में इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे आगे चल करके। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन का हिस्सा बनता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज का रेट बता देता हूँ इस समय का। पैसे भिजवाना चाहें तो भाई उनकी एक खास ऑफर आजकल चल रही है जून के महीने में, उसका फायदा उठाइएगा। एट दिस टाइम दे आर गिविंग फॉर वन पाउंड 127.3 इंडियन रुपीज, एंड दैट इज मैक्सिमम 127.30 रुपए। लेकिन सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, तो भाई यू कुड बी इन टू विन ए 75 पाउंड वाउचर एवरी डे। ये मौका है हर रोज 75 पाउंड जीतने का, अगर आप भाई 1000 पाउंड या इससे ज़्यादा की राशि भेजते हैं तो, और 2000 भेजते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक कैन बी वॉन भाई। ये TNC अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है, लेकिन 1 ग्राम सोना या फिर 75 पाउंड का वाउचर, 1000 पाउंड के साथ 75 पाउंड वाउचर और 2000 पाउंड भेजने पर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक भाई जो है वो दिया जा रहा है, तो इसका फायदा उठाइएगा।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods.
6: Radio partner Leica Radio.

0: जिंदगी में पहली पहली बार प्यार किया, भाई जिंदगी में बहुत बार प्यार किया है, असल में बने ही प्यार करने के लिए हैं, ये जीवन मिला ही प्यार करने के लिए, लेकिन इसमें हम नफरतों के लिए भी समय निकाल लेते हैं, इसमें लड़ाई झगड़े वैर विरोध भी हैं। अब देखिए हमारे आसपास चारों तरफ जंग चल रही है, दो देशों के बीच, दो विचारधाराओं के बीच, दो समाजों के बीच, भाई ये जो ऐसा मामला जो चल रहा है आजकल, उसको देखते हुए कुछ लोग शांति प्रयासों के लिए भी आध्यात्मिक कार्यों में जुटे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, विश्व में शांति की स्थापना के लिए यज्ञ हवन पूजा पाठ तीर्थ व्रत धार्मिक कार्यों में संपन्न संलग्न हैं। तो ऐसे में मैंने जैसा कहा था कि भाई हमारे एक अतिथि जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, और 11 बजे चिंतन में हमने कोशिश की थी लेकिन उस समय वो उपलब्ध नहीं थे, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अब उनसे संपर्क हो गया है। तो बड़े सम्मान के साथ परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय, भाई कितने विशेषण में लगा उनके नाम के साथ, हिज डिवाइन होलीनेस गोस्वामी गोकुल उत्सव महाराज जी फोन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। इंदौर भाई बड़ी सांस्कृतिक नगरी है, और ये भी कहते हैं कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, और वहाँ के लोग भी उतने ही सुसांस्कृतिक भाई विद्या से संपन्न। पर महाराज श्री जो हैं वो किसी विशेष प्रयोजन से यूके आए हैं, और उसी के बारे में हम जानकारी चाहते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ महाराज श्री, आपकी आवाज पहुंच रही, स्वागत है आपका लाइका रेडियो नेटवर्क पर।
1: जय श्री कृष्ण जी।
0: जी पधारिए, आपके आने का प्रयोजन यहाँ यूके में?
1: हम सोम यज्ञ के लिए यहाँ आए हैं, जो सृष्टि का वैदिक यज्ञ है और सबसे महान यज्ञ है।
0: जी जी जी। सोम यज्ञ से अभिप्राय, वैसे तो यज्ञ बहुत सारे लोग करते हैं, कई तरह के यज्ञ, लेकिन सोम का जहां तक मैं समझता हूँ चंद्रमा का जो है ये पर्यायवाची शब्द है सोम। सोम यज्ञ यानी जो शीतलता देता है, शांति देता है। तो विश्व भर में जहां इतनी क्या कहें जंगे युद्ध चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं, तो उसमें शांति स्थापना के लिए ये आपका प्रयास, आपका योगदान रहेगा समाज के साथ?
1: जी, सोम यज्ञ विष्णु यज्ञ है, और सोम का मतलब चंद्रमा भी है, तो विष्णु जो है वो न्यूट्रिशन देता है, इसलिए सोम यज्ञ सबसे महान यज्ञ है। जहाँ सोम यज्ञ होता है वहाँ 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, वहाँ ब्राह्मण देवता यज्ञाचार्य प्रधानाचार्य जैसे डॉक्टर ब्रजोत्सव जी धाम सोम यज्ञ में विराजमान होंगे, इसलिए जो सोम यज्ञ की परिक्रमा लगाता है उसे अद्भुत और अलौकिक फल प्राप्त होता है।
0: महाराज श्री, अगर सरल भाषा में मैं जानना चाहूँ, क्योंकि हमारे श्रोताओं को जो है अगर संप्रेषण हो सके, उन तक पहुँच सके, तो सीधी सादी भाषा में आप परिक्रमा कहते हैं, यानी हवन कुंड के चारों तरफ चक्कर लगाने को परिक्रमा कहते हैं, कि जो जिसे ये सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन ये सोम यज्ञ एक तो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, ये जानकारी अवश्य चाहिए ताकि वहां पहुंच करके लोग इसका लाभ ले सकें। तो मेरा ख्याल ये 14 तारीख से शुरू है, इस संडे से
1: 14 तारीख से पितृ यज्ञ है, और फिर पुरुषोत्तम यज्ञ है। सोम यज्ञ 16 तारीख से 21 जून तक 6 दिन का स्टेनमोर स्वामीनारायण मंदिर ग्राउंड में होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोम यज्ञ में जो खाली हाथ आता है वो आशीर्वाद पाता है, वो भर के झोली जाता है। तो सोम यज्ञ के सामने ही विष्णु गोपाल यज्ञ होगा, जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए, रिद्धि प्राप्त करने के लिए, रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए विष्णु गोपाल महायज्ञ होगा। तो आप सब लोग विष्णु गोपाल महायज्ञ में सोम यज्ञ के साक्षी में पधार करके इसमें आहुति डालिए, तो सारे दोष, सारे वाइस, सारी मिस्टेक जो भी हमने जीवन में की है उसका दोष धुएं के साथ वैनिश हो जाता है।
0: महाराज श्री, मैं पूछूं कि व्यक्तिगत लाभ के लिए यानी इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए तो लोग आए, आप उन्हें बुला रहे हैं, बट आई थॉट दैट इट इज डन फॉर द यू नो वर्ल्ड एट लार्ज, पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए भी इसका एक उद्देश्य, एक प्रयोजन है, तो ऐसा भी कुछ कर रहे हैं?
1: विश्व शांति के मंत्र आते हैं इसमें, इसलिए सोमयज्ञ हर जगह होना चाहिए ताकि हर जगह पर शांति मिले, शांति की स्थापना हो और मनुष्य का, मानव का जीवन सुखमय बने।
0: महाराज श्री, इसमें आपकी भूमिका, आप तो पूरे यज्ञ को, मतलब पूरे इवेंट को संचालित करेंगे और आपके सुपुत्र आपके हैं, वो भी पधारे हुए हैं, परम पूज्य गोस्वामी डॉक्टर ब्रिज उत्सव जी महाराज, तो वो क्या इसमें भूमिका निभाएंगे?
1: वो स्वयं सोम यज्ञ करेंगे और उनके साथ जो 17 पंडित हैं उनको मेरे सुपुत्र ब्रजोत्सव जी महाराज गाइड करेंगे, वो इसके प्रधानाचार्य हैं और मैं इसका संचालक हूं और मेरे गाइडेंस में ऑन बिहाफ ये पूरा सोम यज्ञ संपन्न होगा और हम अनेक प्रकार की प्रार्थना करेंगे और उन प्रार्थना मंत्रों से अक्षत से, अभिमंत्रित अक्षत से आशीर्वाद प्रदान करेंगे और जो विष्णु गोपाल यज्ञ में जो लोग पार्टिसिपेंट बनेंगे उनको भी आशीर्वाद दिया जाएगा ताकि उनके नवग्रह के दोष, पितृ दोष, सर्प दोष, काल सर्प दोष, सब प्रकार के दोष उनके दूर हों और वो सोम यज्ञ के सानिध्य में अपने हाथ से परिवार सहित यज्ञ का लाभ ले सकें, क्योंकि सोम यज्ञ बार बार नहीं होता, ये बहुत तपस्या और तप करने के बाद सोम यज्ञ होता है, इसमें हमको एक एक महीने का उपवास और व्रत करना पड़ता है और अग्निहोत्र करना पड़ता है, दान करना पड़ता है, तब जाकर के यह सोम यज्ञ होता है।
0: महाराज जी, ये जो आप क्रियाएं बता रहे हैं ये आप करेंगे, आचार्य गण करेंगे या जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें भी व्रत, उपवास और विशेष जीवन यापन इन दिनों में करना है?
1: नहीं, उनको ये तो हम लोग करके आए हैं।
0: अच्छा।
1: एक महीने का व्रत उपवास और सोम यज्ञ के दौरान भी हम व्रत उपवास करेंगे।
0: जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए कोई नियम, कोई संयम बरतने की आवश्यकता है वो बता दीजिए।
1: हाँ, उनके लिए ये है कि वो जब तक यज्ञ कर न ले तब तक वो अन्न न खाएं, फलाहार खा सकते हैं,
0: उपवास
1: कर सकते हैं, चाय दूध पी सकते हैं, जैसे उनका अगर चांस आया दिन में 11 बजे तो 11 बजे तक वो अन्न ना खाएं
0: और उसके बाद वहां पर मेरा ख्याल है यज्ञ संपन्न होने के बाद वहां पर प्रसाद की व्यवस्था भी होगी तो वहीं पर वो अपना उपवास खोले।
1: हाँ, भोजन प्रसाद ले सकते हैं आराम से और सोम यज्ञ में बैठे मंत्रों की ध्वनि सुने, इसका एक सोल वाइब्रेशन का उनको अनुभव होगा, तो जरूर सोम यज्ञ में आए और अपने हाथ से यज्ञ करें, आशीर्वाद पाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें, सोम यज्ञ की प्रदक्षिणा, उसका चक्कर लगाएं, परिक्रमा करें, तो आपके जीवन के जितने फेरे हैं, जितने घेरे हैं, सब प्रभु की कृपा से भीग जाएंगे और आपका जीवन सुखी होगा।
0: भाई स्वामी जी, बहनों भाइयों, सरल भाषा में बता दूं आपको कि ये जो यज्ञ का आयोजन हो रहा है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह नक्षत्र का कोई दोष है, कोई काल सर्प दोष है, किसी भी तरह का कोई दोष है, तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है और फिर ये जब यज्ञ के संपन्न होने पर आचार्य गण जो अक्षत यानी चावलों से अभिमंत्रित के यानी मंत्रों के द्वारा उन्हें जो है चावलों को आपके ऊपर आशीर्वाद जो देंगे, आपको देंगे, तो उसका फल जो है वो विशेषदायी होता है। आजकल पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इसके कारण ये यज्ञ जो है बहुत अधिक फल देने वाला है। महाराज श्री, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार पुनः ये बताना चाहता हूं कि तारीख कौन सी है, कब तक है, स्थान कहाँ है, समय क्या रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक लोग आए, ये 14 तारीख से शुरू है ना कार्यक्रम? और
1: 14 तारीख से पितृ यज्ञ है और पुरुषोत्तम यज्ञ है।
0: जी
1: सोम यज्ञ स्टार्ट होगा
0: 16 से,
1: तारीख से
0: ठीक है, और
1: 21 जून तक
0: जी
1: मोर स्वामीनारायण मंदिर ग्राउंड,
0: स्टैनमोर स्वामीनारायण मंदिर, नोट कर लीजिए बहन भाइयों। और जहां तक मुझे जानकारी है वहां पार्किंग की व्यवस्था रहती है, काफी विशाल ये वेन्यू है, स्थल है, तो वहां पर पहुंचिएगा। 14 तारीख से पितृयज्ञ है और उसके बाद सोम यज्ञ 16 तारीख से शुरू है और वहां पर संत महात्माओं का दर्शन, सानिध्य, प्रवचन, वो सभी लाभ प्राप्त होगा। महाराज श्री, और कोई विशेष बात अगर जोड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि समय की मर्यादा हमें यहीं तक अनुमति देती है, तो सोम यज्ञ की जानकारी हमने दे दी है, लोग पहुंचेंगे और मर्यादा में रह करके सोम यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे। जी
1: जी, इसमें ऐसा है, इसमें 3 प्रकार की भिक्षा होती है, देव भिक्षा, ब्रह्म भिक्षा और यज्ञ भिक्षा। तो वो भिक्षा दान करने से सोम यज्ञ में वो पार्टिसिपेंट बनता है, जो देने वाला है श्रद्धालु वो पार्टिसिपेंट बनता है और सोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। फिर जब अपने हाथ से विष्णु गोपाल यज्ञ करता है तो उसके ग्रह दोष, नवग्रह दोष, पितृ दोष, सर्प दोष, काल सर्प दोष, सभी प्रकार के दोष जो हैं वो दूर होते हैं। आहुति स्थूल में डालता है और जितने दोष हैं वो धुएं के साथ वेन्निश होकर के आकाश में उड़ जाते हैं।
0: थैंक यू वेरी मच महाराज श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों, ये सारी जानकारी मुझे यकीन है कि वहाँ भी उपलब्ध रहेगी।
2: सॉफ्ट एंड टेंडर
0: संगीत,
2: ग्रैंडमास वार्म हग
0: और मंत्र और
2: भाई एक
0: सात्विक वातावरण, ये सब चीजें जो हैं वहाँ पर आपको आनंदित करेंगी, आपको लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। महाराज श्री, मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए क्षमा याचना सहित आपसे मैं अब अनुमति चाहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को यह सूचना मिल गई है 14 तारीख से 21 तारीख तक स्वामी नारायण मंदिर स्टैनमोर में, नोट कर लीजिए क्योंकि स्वामी नारायण मंदिर कई हैं तो ये स्टैनमोर में जो है वहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। महाराज श्री, आशीर्वाद के 2 शब्द हमारे श्रोताओं के लिए कह करके आप हमें कृतार्थ कीजिए।
1: बस आप विष्णु गोपाल यज्ञ करिए, आपका जीवन भगवान सुखमय बनाए, शांतिमय बनाए, रिद्धि समृद्धि प्राप्त हो और आप खूब धर्म का प्रचार करें और सुखी जीवन जिए। बहुत बहुत आशीर्वाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद महाराज श्री, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई इस भव्य आयोजन के लिए और हमें विश्वास है कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो है वहां पहुंच करके लाभान्वित होंगे इस महायज्ञ में।

0: to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Another huge giveaway is coming. Leica Radio Network.
1: मनोरंजन कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम दौर में स्वागत है आपका। दोपहर बाद एक बजे तक मैं रवि शर्मा आपकी सेवा में हाजिर हूं। इफ यू हैव जस्ट जॉइन मी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है जीरो?

0: ऐसा काहे को होवत है लैला,
1: ऐसा काहे को होवत है रे लैला, ऐसा काहे को होवत है रे लैला।

0: Yes, my darling. Yes, my darling.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: अभी जो गीत सुन रहे थे आप, अकेली मत जइयो वाज द नेम ऑफ द फिल्म एंड आई थिंक ही आई थी 1963 में। तो साहब आज के दिन के साथ जुड़े हैं कुछ लोग, एक तो राज खोसला प्रोड्यूसर डायरेक्टर भाई फिल्म हस्ती हैं और मुझे यकीन है कि इनके बारे में बहुत सारी जानकारी लेकर के अपने बाली भाई आएंगे। वसंत देसाई जी का जन्मदिन चिंतन में आपने सुन लिया। सत्येन बोस डाइड ऑन दिस वेरी डे एंड असद भोपाली की भी पुण्यतिथि पड़ती है भाई, गीतकार असद भोपाली साहब। लेकिन इसके अलावा भाई आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बता दें कि अमीशा पटेल और सोनम कपूर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पार्टी में मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं बिजी हूँ, वैसे मुझे बुलाया भी नहीं है, नहीं, लेकिन अगर बुलाया भी तो मैं नहीं जा सकता भाई, पहले ही बता देता हूँ ना, अपनी तरफ से क्लियरेंस दे देना अच्छी बात है ना। राइट, एक दो बातें हैं जो आप तक पहुंचानी है। वो एक तो ये क्या भाई, वो लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद जी टीवी फॉर वो दो शो आ रहा है, स्टेज शो हमारे राम बाई टेकिंग प्लेस बिटवीन 9th and 12th July एट लंडन एवेंटिम अपोलो, ये हमारे समित में है। इट स्टार्ट्स आशुतोष राणा, जिनकी हिंदी भाई बड़ी संस्कृत नुमा है, बड़ा शुद्ध बोलते हैं, रावण की भूमिका में होंगे ये, और राहुल बुचर जो है वो होंगे राम के रोल में। और ये 9 से 12 जुलाई के बीच यहाँ पर प्रदर्शन इसका होने वाला है लंदन में, हैमरस्मिथ में, एवेंटिम अपोलो में। अपनी टिकटों का इंतजाम कर लीजिएगा। इसके अलावा भाई रागासन, ये नाम तो सुना होगा आपने, लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड ए पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट laikaradio.com।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
4: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। टेक योर टेस्ट बड्स टू द नेक्स्ट लेवल विद टिल्डा।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले फिल्म चांदी सोना का गीत सुनवा रहे थे हम आपको। और भाई हमें एक जानकारी भिजवाई है हमारे कदरदान श्रोताओं ने, कहते हैं कि आज 9 जून को ममता और किरण सुन रहे हैं हमें साउथ हॉल में, और ये किरण कहती हैं कि आप ना उन किरण को हैप्पी बर्थडे कहिए जिनका आज जन्मदिन है। तो जो किरण जी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, पार्टी शार्टी करें तो हमें भी याद रखिएगा। और दूसरा भाई 9 जून को सादगी और ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक सिंबल लाल बहादुर शास्त्री जी ने आज 1964 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। दूसरे कहें या तीसरे कहें, भाई तीसरे इसलिए कि पंडित नेहरू की डेथ हुई थी 27 मई 1964 को, और उसके बाद 9 जून तक प्रधानमंत्री का पद खाली तो नहीं रहता ना, तो कोई तो प्रधानमंत्री बना था उस पीरियड में, तो वो दूसरे प्रधानमंत्री थे। और भाई वो एक बार फिर भी बने थे जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। आपको बताएं ऐसा एक व्यक्ति जो बहुत देर तक केंद्र में मंत्री भी रहा, प्रधानमंत्री भी रहा दो दो बार, और है ना भाइयों आपको यकीन नहीं आएगा मैं उनसे मिला, यस उनसे मुलाकात की दिल्ली में, उनके फ्लैट पर जाके उनका आशीर्वाद लिया, और यकीन नहीं आता था कि मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री से मिल रहा हूं। उनके बारे में चिंतन में भी हमने जिक्र किया था कि बंदे ने कोई बैंक अकाउंट रखा ही नहीं, धेला नहीं था उसके पास, स्लीपर चप्पल पहने सफेद कुर्ते पजामे में अपने उस छोटे से फ्लैट में टहल रहे थे और बातें करते भाई, बहुत सारी क्या कहते हैं जानकारी, बहुत सारे उपदेश भी दिए मुझे, आशीर्वाद भी दिया। नाम था उनका गुलजारी लाल नंदा। भाई नंदा जी जो है इतनी सादगी से रहते थे कि मैं तो देखता ही रह गया कि ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात हो रही थी। बच्चा सा था मैं, आई थिंक स्टूडेंट लाइफ में उनसे मिला था। और उसके बाद भाई एक घटना वो भी घटी कि जब उनका सामान मकान मालिक ने उठा के बाहर फेंक दिया कि वो किराया नहीं दे पा रहे थे, वो कह रहे थे मेरी पेंशन आएगी मैं दे दूंगा, लेकिन साहब उस मकान मालिक को भी नहीं पता था कि वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। चिंतन में मैंने सुना था ये किस्सा कि जब वो फेंक रहे थे लोग जमा हो गए वहां, और उन्हीं में था एक पत्रकार एक अखबार वाला, उसने एक दो फोटो वोटो ले लिए और भाई वो जाके अखबार को कहा कि एक बुजुर्ग आदमी का सामान मकान मालिक ने देखो कैसे बाहर फेंका, कैसे वो गिड़गिड़ा रहा है कि मैं दे दूंगा किराया। तो भाई वो अखबार वाले ने देखा, रे ये बुजुर्ग तो भाई भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। और साहब जब खबर छपी तो फिर सरकार हिल गई दिल्ली की, क्या कहते हैं उन गलियों से, सत्ता वाली गलियों से गाड़ियां दौड़ी, आईएएस ऑफिसर्स और भाई बड़े बड़े अधिकारी मंत्री पहुंचे फ्लैट पर, जाकर के अनुरोध कर रहे हैं कि सर आपके लिए सरकारी बंगला अवेलेबल है, आप क्यों यहां रह रहे हैं जहां किराए के लिए। अब वो मकान मालिक भी हाथ जोड़ रहा, पैर पकड़ रहा, माफ़ी मांग रहा, लेकिन गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा सादगी के प्रतीक, वही कहते हैं मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, और मुझे ऐसे ही जीना, अगर मैंने अपनी सेवाओं के बदले, भाई वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, अगर सेवाओं के बदले पेंशन ली तो फिर मैं देश प्रेमी नहीं एक मजदूर हो जाऊंगा। क्या बात है साहब। तो लाल बहादुर शास्त्री जी इससे पहले गुलजारी लाल नंदा थे, और आज के दिन 9 जून को लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1964 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। याद करते हैं हम उनका नारा, जय जवान जय किसान। डीजे साहब साउथ हॉल ट्रैवल वाली बात भी आप तो को याद दिला दें, पहले भी बताया फिर बता दें, वो कह रहे हैं कि भाई सैर सपाटे के लिए निकलिए, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन। 40 वर्षों से ज्यादा का भरोसा हमने अपने भाई क्लाइंट्स को दिलवाया है, उनके हृदय में जमाया है, तो आप भी उसका फायदा उठाइए। दे आर द विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड, देयर फोन नंबर इज 02085748410। साउथ हॉल ट्रैवल।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. See This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA. City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
4: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
4: Also explore 2026 cruises
2: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're atoll protected.
5: 105 shows pura karya pachi have Leicester ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy natak
6: Jay's Entertainment line avi rahya che sakhna re jo husband ji
5: Leena Shah ane Samir Shah sathe hasyano full dose 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage tickets booking mate call karo Mr B07860280655 Mumbai Sandwich Station 07834833249 athwa Eventbrite .co.uk. Sakina Rejo, Husband Ji.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.

0: लगता है कि भाई ये धुर रही होगी कल्याण जी आनंद जी की या फिर नहीं, किसकी है कुछ मालूम नहीं।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: धीरे धीरे कार्यक्रम के समापन का समय हुआ जाता है और बहनों भाइयों मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई, आज जन्मदिन मनाने वालों में एक और नाम शामिल है, बड़ा दबंग नाम है ये, दबंग लेडी, नाम सुना है किरण बेदी। अरे साहब पहली क्या कहते हैं कि इंडियन पुलिस ऑफिसर थी ये उस जमाने में जब इन्होंने भाई पुलिस में अपनी धाक जमाई। ये तिहाड़ जेल की अधीक्षक भी रहीं और कुछ समय के लिए जब ये दिल्ली पुलिस में अधिकारी थी, ऑफिसर थी, वहाँ की इंचार्ज थी, तो कहते हैं कि भाई गाड़ियाँ जो खड़ी कर लेते थे कहीं भी तो किरण बेदी ने ऐसी व्यवस्था की कि क्रेन आती और गाड़ियों को उठा ले जाती। और साहब उसके बाद तो किरण बेदी का नाम हो गया था क्रेन बेदी, क्रेन से उठा ले जाती थी। लेकिन भाई बाद में पॉलिटिक्स इन्होंने ज्वाइन की और आजकल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं पुडुचेरी की। आज उनका जन्मदिन है, अमृतसर में जन्मी थी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स किरण जी। इसके अलावा भाई कई किरण आज अपना जन्मदिन मना रही है, सबको हैप्पी बर्थडे। अनुष्का शंकर, रवि शंकर साहब की बेटी, ये भी सितार बजाती हैं भाई और इनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था 1981 में, लंदन में जन्मी थी अनुष्का शंकर, पंडित रवि शंकर की होनहार बेटी। तो भाई आपके घर परिवार में भी किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एक और नाम था मैं ढूंढ रहा था, हाँ वो नाम था नंदिनी सतपथी, कटक में उड़ीसा की, ए भाई ये उड़ीसा में जन्मी थी, पॉलिटिशियन है उड़ीसा की, तो इनका भी आज जन्मदिन है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के रेट्स नोट कीजिएगा भाई, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.66 रुपीस, पाकिस्तानी 372.82, श्रीलंकन रुपए 451.94, बांग्लादेशी टके 164.64 एंड अफगान अफगानी 83.84।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Well, the gold is trading at the rate of 104.28 pounds per gram.
1: Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
2: Big deals, big savings, while stocks last.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
7: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है। आई एम डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती, ओनर साइकियाट्रिस्ट।
8: वन मोर ग्रूसम मर्डर।
6: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल। ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, देयर आर मेनी मोर इन डेंजर।
9: करिश्मा कपूर इन एंड एज ब्राउन, नाउ स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5।
10: New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit HeraldPackaging.com. Mom always said, Beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhaayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhaayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhaayu, Ayurveda that fits your life.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
10: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
12: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
10: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
12: Or sales at leicamedia.co.uk.
13: Jisko sabki khushi ka hai khayal, kya hai uske dil ka haal? Milie Anupama se.
10: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE392.
14: Presented by South Hall Travel, powered by Tata Tea Premium and Wellman and Wellwoman by Vita Biotics.
15: Have you noticed the way fans shout at football matches?
16: Oh, wake up!
15: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org. You know how fans shout at football matches?
16: Oh, wake up!
15: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
17: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
18: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: नंबर्स।
1: आहा रवि शर्मा जी, इनके साथ कल डेट है मेरी, मतलब के हमारी ऑफिस की मीटिंग है, इसलिए हम मिलने वाले हैं सब। सो वादा करके गए हैं, कभी कभी छुट्टी में लगा लेते हैं, लेकिन सुनिएगा कुछ।
0: Like a radio, like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
1: एक ऐसा इंसान जो क्लासिकली ट्रेंड था, बॉम्बे गया प्लेबैक सिंगर बनने के लिए और बन गया वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड स्क्रीन राइटर्स ऑफ हिंदी सिनेमा। इन्होंने शुरुआत की थी एज एन असिस्टेंट टू गुरुदत्त। पहला गाना गुरुदत्त की फिल्म का जिसमें असिस्टेंट थे, उसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया। सुनिएगा फिर बात करेंगे।
0: Spring into the sunshine on Leica Radio Network.
2: ये भी चुके हम दिल नजराना दिल का

0: ऐसे ही अब्रप्टली गाना पूरा हो जाता है. सबसे पहले तो ऑल दोज पीपल हु रियली विश मी राइट एट द बिगिनिंग ऑफ माय शो हैपेंस टू बी नन अदर देन पैमी सिंह जी एंड देन सुनीता शर्मा, भरत गंगाराम एंड देन वी गॉट हरीश खत्री, अरुणा एंड भूपेंद्र पटेल एंड हंसा वोरा जी एंड ब्यूटिफुल मैसेजेस. And thank you very much for lovely messages from all of you. And all the late Latifs. Kiran Devji as well. Yes, first one to appear at 1 o'clock. And then the ones who are having lunch and appear as late Latifs would be Rajiv Patel and Karsan Pindoria and Jyoti and Girish Shah and Arjun Bhai and all of those guys. And Jasmine as well, you know. So these were the late Latifs. Anyway, hum baat karte hain ek aise shakhs ki jinhone classical music kiya. और फिर ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक स्टाफ भी बने हुए थे ऑल इंडिया रेडियो में. एंड ही केम टू बॉम्बे टू बी अ सिंगर एंड ही एंडेड अप एज वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड स्क्रीन राइटर्स ऑफ हिंदी सिनेमा 1950s से लेकर 1980s तक. इट वॉज अ वेरी सैड डेथ ऑफ दिस पर्टिकुलर मैन हु वर्कड and toiled to give us so many beautiful films. इन्होंने assistance किया गुरुदत्त जी के साथ. He started his career as an assistant with गुरुदत्त and then he went on to make hit films like CID. Now he was a woman's man. How would I say a woman's man? In other words, he always used to make films जहाँ पे औरत को तवज्जो दी जाती है. जैसे कि इन्होंने वहीदा रहमान जी को रोल दिया था. he introduced वहीदा रहमान in the film CID, जहाँ पे ये गाना आपने सुना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, शमशाद बेगम जी का गाया हुआ. एंड पहला गाना जो था फिल्म जाल का, दिल भी दे भी चुके हम दिल, गीता दत्त और किशोर कुमार का, वो था गुरुदत्त की फिल्म थी, उसमें असिस्टेंट थे वो. इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई. वी आर टॉकिंग अबाउट राज खोसला. राज खोसला जी ने इतनी अच्छी फिल्में बनाई जहाँ पे इन्होंने कितनी औरतों को नई लाइफ दे दी. जैसे कि साधना, साधना जी को ही गेव हर सिग्नेचर रोल एज मिस्ट्री गर्ल. मिस्ट्री गर्ल जहाँ पे अ ट्रिलोजी ऑफ थ्री मिस्ट्री गर्ल फिल्म्स, दैट इज वो कौन थी, मेरा साया, अनीता. एंड मुमताज को ऐसा रोल दिया इन 1969, ही डायरेक्टेड दो रास्ते. एंड मुमताज को हाउस होल्ड नेम बना दिया, हाउस होल्ड नाम. जी हाँ, नूतन who was of quite a mature age in 1978, इन्होंने फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में उनको लीड रोल दे दिया. एंड शी वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, डायरेक्टेड बाय राज खोसला एंड सुदेश इसार. नाउ जैसे मैंने कहा, ही स्टार्टेड हिज करियर विद गुरुदत्त एंड देन ही, बिकॉज ही हैड डन क्लासिकल म्यूजिक, ही इंश्योर्ड एक्सलेंट म्यूजिक इन हिज फिल्म्स. जैसे इस आवर में आप सुनते जाएंगे और एग्री करते जाएंगे मेरे साथ, एक्सलेंट सॉन्ग पिक्चराइजेशंस एज वेल, बिकॉज समझ थी, संगीत की समझ थी. म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के उनको टटोलते थे, मतलब कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, यहाँ पे ये सुर ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये ट्यून ठीक नहीं लग रही है, और जहाँ अच्छा गाना मिलता है वाह वाह करके बोलते हुए इसको पिक्चराइज करूँगा. ही मेड आशा पारेख अ सीरियस एक्ट्रेस इन दो बदन. यू नो आशा पारेख एंटर्ड जैसे लव इन टोक्यो जैसी फिल्म्स एंड शी वॉज लाइक शमी कपूर के साथ एंड ऑल दोज वेरी हैप्पी गो लकी फिल्म्स. उसमें से एक सीरियस एक्ट्रेस बनाया दो बदन फिल्म में 1966 में. एंड सिमी गरेवाल को ऐसा रोल दिया दैट गॉट हर अ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवॉर्ड इन दो बदन. जी हाँ, सो मतलब मुमताज देखो, वहीदा रहमान देखो, साधना देखो एंड देन आशा पारेख देखो, सिमी गरेवाल, नूतन, इन सब की लाइफ बना दी इन्होंने बिकॉज ऑफ हिज क्लासिकल बैकग्राउंड. म्यूजिक भी अच्छा मिलता था एंड ही ऑलवेज पुट सम सॉन्ग विद फोक ट्यून्स. जैसे कि CID फिल्म में बम्बई का बाबू, सोलवा साल, मेरा साया, दो रास्ते, मेरा गांव मेरा देश. हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज किशोर कुमार. सो आई विल चूज अ सॉन्ग फ्रॉम फिल्म दो रास्ते फॉर विच वॉज राज खोसला's फिल्म. अभी दूसरी फिल्म में मैं देखूँ तो इनका डेब्यू हुआ था 1955 में मिलाप फिल्म, एंड देन दैट वॉज सो सो, इट वॉज अ ग्रेट हिट. लेकिन एक मुसाफिर एक हसीना, बम्बई का बाबू, CID, वो कौन थी, दो बदन, मेरा साया, एंड देन दो रास्ते, एंड देन मेरा गांव मेरा देश. मेरा गांव मेरा देश दैट वॉज डेकॉय ड्रामा जिसमें से विच इंस्पायर्ड शोले. 1971 की वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश और शोले थी 1975. यू विल सी के उसका इन्फ्लुएंस जरूर था. एंड देन ही गॉट द हॉटेस्ट पेयर, राजेश खन्ना एंड मुमताज इन प्रेम कहानी. उस जमाने में हॉटेस्ट पेयर हुआ करती थी राजेश खन्ना और मुमताज, और प्रेम कहानी में उनको वो ले आए. एंड दूसरी फिल्में भी थी, एंड यू कैन सी के इनके ऑनर में पोस्टेज स्टैम्प भी बनी, राज खोसला फाउंडेशन भी बना बाय हिज डॉटर सुनीता खोसला भल्ला. लेकिन हम आगे जाएंगे, इनकी फिल्में जब फ्लॉप होने लगी सैडली, तो ही टुक रेफ्यूज इन अल्कोहल एंड ही डाइड ऑन 9th June 1991 में वो गुजर गए. एंड वी आर रिमेंबरिंग हिम ऑन हिज 35th डेथ एनिवर्सरी. Raj Khosla.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And £1 in British sterling can get you 127.3 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app and branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pulp, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara najikna Asian shops ma.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep, 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner, Leica Radio.

0: This was another Raj Khosla film and Ek Musafir Ek Haseena 1962. अगर मैं फिल्मों के नाम दूं आप तालियां बजाते रहेंगे. दो बदन के बाद दो रास्ते, मेरा गांव मेरा देश, प्रेम कहानी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, दोस्ताना, कच्चे धागे, एंड देन नहले पे दहला, माटी मांगे, शरीफ बदमाश, सनी, नकाब, दासी, दो प्रेमी. नेक्स्ट गाना है दो प्रेमी, वेयर ही गॉट मुमताज एंड राजेश खन्ना एक्टिंग इन इट. राज खोसला, what a man, what a man. Hope you enjoyed the tribute.
1: Are you listening? Leica Radio is now available across Birmingham on DAB.

0: ये गाना ऑलरेडी 7th of June को बज चुका है, तो मैं दूसरा गाना सुनाता हूँ। चल दरिया में डूब जाएं, मिसेस शेख आपकी नजर।
1: तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे।

0: जी हाँ, एक ऐसे शख्स जिन्होंने 400 से ऊपर गाने लिखे 100 फिल्मों के लिए, और शायद 100 से भी ऊपर फिल्में होंगी, लेकिन तकरीबन 400 सॉन्ग्स फॉर ओवर 100 फिल्म्स। अब ये कौन थे? अभी वंस अपॉन अ टाइम की बात करता हूं, फाजली ब्रदर्स, वो लोग एक फिल्म बना रहे थे दुनिया, और दे वर फिल्म मेकर्स फाजली ब्रदर्स, एंड इनकी एक फिल्म जो थी दुनिया, उसमें एक लिरिसिस्ट थे उनके आरजू लखनवी। आरजू लखनवी ने दो गाने लिखे और फिर वो पाकिस्तान चले गए आफ्टर द पार्टीशन। सो फाजली ब्रदर्स परेशान हो गए और बातें इन्होंने दोस्तों को कहा कि वी आर लुकिंग फॉर सम न्यू लिरिसिस्ट्स। उनके एक गहरे मित्र थे फाजली ब्रदर्स के, सुगम कपाड़िया। जी हाँ, अ बिजनेसमैन हु ओन्ड अ फ्यू सिनेमाज इन भोपाल, एंड ही टोल्ड फाजली ब्रदर्स दैट देयर वर मेनी गुड पोएट्स इन भोपाल। तो उन्होंने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज किया एट भोपाल टॉकीज, विच वॉज ओन बाय सुगम कपाड़िया। इन्होंने एक मुशायरा रखा, एंड वो दिन था 5 मई 1949 को वो मुशायरा हुआ भोपाल टॉकीज में। नाउ वहां पे एक 28 साल का नौजवान आया और उसकी पेशगी से हमारे फाजली ब्रदर्स बहुत उत्सुक हो गए, मतलब प्रभावित हो गए, एंड दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। एंड वो नौजवान था असदुल्ला खान। असदुल्ला खान वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ मुंशी अहमद खान। मुंशी अहमद खान एक टीचर थे अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। व्हाट अ लकी मैन टू हैव अ फादर हु इज टीचिंग अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। उन्होंने सिखाया। बेटा असदुल्ला खान वॉज बॉर्न इन भोपाल। He was born on 10th of July 1921 and he passed away at the age of 68 on 9th of June 1990. So 1990 mein unka intiqal ho gaya. So we are actually remembering him today on his 36th death anniversary. Unka naam Asad Bhopali. असदुल्ला खान उनका असली नाम, लेकिन असद भोपाली उन्होंने नाम रखा, क्योंकि हमारे फाजली ब्रदर्स उनको ले गए बॉम्बे 13 दिन के बाद। मुशायरा था 5 मई को, 18 मई को वो ले गए टू बिकम अ लिरिसिस्ट इन द ग्रेट फिल्म, एंड देन फिल्म द ग्रेट फिल्म इंडस्ट्री आई मेंट। एंड देन असद रोट 2 सॉन्ग्स फॉर फाजली ब्रदर्स। देन इन 1950 उम्र थी 29 साल की, ही रोट सॉन्ग्स फॉर कपल ऑफ फिल्म्स। सो फार हिज सॉन्ग्स वर संग बाय रफी साहब, सुरैया, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम। एक ब्रेक आई, बीआर चोपड़ा की फिल्म थी अफसाना, इट वाज रिटन बाय एंड स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी बाय आईएस जौहर। अशोक कुमार वाज इन अ डबल रोल, ट्विन ब्रदर्स थे उसमें। इट स्टार्टेड अ ट्रेंड ऑफ ड्यूअल रोल्स इन फिल्म्स, दैट पर्टिकुलर बी आर चोपड़ा फिल्म अफसाना इन 1951। म्यूजिक बाय हुस्नलाल भगतराम, और वहां पे जगदीप वॉज अ चाइल्ड एक्टर इन दैट पर्टिकुलर फिल्म। बट एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत इन पारस मनी, उनकी डेब्यू फिल्म में इन्होंने एक हिट गाना लिखा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। मैं वो गाना आपको सुना नहीं सका, पर जो इंदिवर जी ने वो गाना लिखा था उस फिल्म का, रोशन तुम ही से दुनिया, उसी से मुझे ये आवर शुरू करना था, इसलिए मैंने वो इंदिवर जी का गाना सुनाया। लेकिन आई वॉन्टेड टू स्ट्रेस अपॉन पारस मनी द फिल्म, जिसमें असद भोपाली जी ने लिखा था। लेकिन इतना भी मैं कहना चाहता हूँ, उनकी उम्र थी 42 साल की, ही वॉज 42 years old व्हेन पारस मनी फिल्म के लिए इन्होंने लिखा। लेकिन नाम उनका जाना गया, लॉट्स ऑफ फिल्म्स विद उषा खन्ना। From 1949 to 1990, he wrote around 400 songs for over 100 films. They were not as successful as Majroos, Sultanpuri, Sahir Lodhianvi, Jaan Nisar Akhtar, Rajinder Singh, and Rajinder Krishan, I should have said, and Anand Bakshi ji. इनके जैसे इनको success नहीं मिला because the films he wrote for were all low-grade films, only few songs in high-end films. अब climax पे आता हूँ. In 1989, aged 68, 40 साल के बाद, after his entry into Bombay, he wrote some songs for film मैंने प्यार किया. He suffered a paralytic stroke. The family took him to Bhopal, but 1990 में he got a Filmfare award, but he could not attend. He died on 9th of June 1990. The great man, Asad Bhopali.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.3. 127.3 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app and branch or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 Assistant Street, LE12JU, yeah, Rowlett Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
6: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
6: Also explore 2026 cruises.
5: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
10: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
11: जेज एंटरटेनमेंट लाइन ने आवी रह्या छे सखना रे जो हस्बैंड जी
10: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8:30 वागे अने सांजे 7 वागे टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk
12: Location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
13: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens Bar Danube. Prime location.
14: High appreciation.
13: In Dubai.
15: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure. Ho jaye happy soul.
16: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
15: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
17: Be part of a historic grand opening.
18: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
17: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
18: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
17: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
19: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
20: Four beers, please, garçon!
19: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
21: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
22: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
21: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
22: दिल तो टूट पे गया,
21: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
23: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
21: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
24: Punjab, the biggest tunes.

0: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. This is Leica Radio across the Midlands.
2: वो गाना जो था टावर हाउस का, उसके बाद अपना बना के देखो।
3: जो उनसे छुपाया न गया राज, दिल उनसे छुपाया न गया।
2: संगीत रवि का।

0: अभी तो मैं जवान हूँ, अभी ये गाने जो लिखे असद भोपाली जी ने, आई कुड कीप ऑन प्लेइंग 400 सॉन्ग ऑफ हिज एंड दे वर ऑल सुपर डुपर हिट्स. अब अदर फिल्म्स ऑफ असद भोपाली रिलीज्ड आफ्टर हिज डेथ, दैट वाज फिल्म रंगभूमि 1992 की. इनको जो अवार्ड मिला था मैंने प्यार किया, ही कुड नॉट गो टू द अवार्ड फंक्शन बिकॉज ही वॉज पैरालाइज्ड एंड He passed away. That's right. And we are going to listen to that particular song in a second. You know, an encyclopedia of Hindi cinema was compiled by Gulzar and Saibal Chatterjee. And usme unhone Asad Bhopali ke bare mein kaha, one of the few names that stand out for their contribution to Hindi film lyrics. Ek sher arz hai. दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीरे निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा.
1: Are you listening? Leica Radio is now available across Birmingham on DAB.
0: You've been listening to The Tribute of Asad Bhopali. 1995 में there was a collection of his poetry which was published by the Urdu Academy of Bhopal. Titled Roshni Dhoop Chandni, a collection of Asad Bhopali's poetry. The great man, Asad Bhopali.

0: मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज, और इनसे म्यूजिक निकालने वाला नन अदर देन राज खोसला। राज खोसला जी वॉज अ क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर एंड ही न्यू एग्जैक्टली वॉट टाइप ऑफ म्यूजिक ही वॉन्टेड, दैट्स वाई उनकी फिल्मों के गाने हमेशा हिट होते थे। और इस फिल्म के अंदर जब किशोर दा ने गाया था, इन्होंने अलग अलग अंदाज से मेरे नसीब में ए दोस्त जैसे गाया था, मेरे नसीब में, ये एक ढंग था उनका, मेरे नसीब, मतलब ऐसे मुर्की निकालते थे, मैं प्रॉपरली बयान नहीं कर सकता हूँ, जब तक मेरे साथ कोई साज हो और बीट हो तो मैं स्टेज शो पे ऐसे सुना सकता हूँ कि अलग तीन सेपरेट ढंग से किशोर दा ने इस गाने को सजाया था, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। इतना मज़ा आता है जब गाना मैं सुनता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस एज वेल, एंड नॉट ओनली दैट, क्रेजी फॉर किशोर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे, तो देखेंगे हु विंस क्रेजी फॉर किशोर 2 टिकट्स।
1: मेकिंग समर फील बेटर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, Leica Radio.

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
1: Leica Radio.
2: Abhira, yahan se mera rasta bahut mushkil hone wala hai. Kya tum mere saath?
3: Jahan tum banta.
2: Ye faisla mera tha. Bhugat tum rahi ho. Main kuch nahi kar pa raha hu.
4: अगर हम साथ हैं
2: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
5: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर.
6: ये रिश्ता क्या कहलाता है. मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड TV. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स.
7: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड. एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग एट radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
8: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious, delicious possibilities with Tilda.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
2: Beta, you're not alone. For five generations, our family trusted one thing. Pure Herbal Care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
1: So where do we find something like that now?
2: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
3: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Sidhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
4: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
7: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
6: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
7: दिल तो टूट पे किया,
6: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
8: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
6: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
9: Punjab, the biggest tunes.

0: लिखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Listen back to your favorite shows by logging on to LikeARadio.com and selecting Midlands or the mobile app. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. A true Radio Wally cracker classic. Name the 90s number. This is Leica.

0: हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा आप और आपसे ही मैंने मोहब्बत की है, वो भी पूरी अनकंडीशनल। और कभी भी बोलने से डर नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर सच्ची मुची वाला प्यार किया हो ना, प्यार आपका सच्चा हो ना, तो डरना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, माहौल देख के बोलना भाई। Is that time of the evening? Well, we got to see what is happening around the clock, around the globe.
1: The Radio Wally roller coaster flies back into the 90s.
0: So dedicating this beautiful track. वापस आपके लिए एक सवाल के तौर पे, आप मुझे इतना प्यार करोगे? मैं जहाँ बोलूँगी मेरे साथ चलोगे? हर शाम 7 से 10 के बीच।

0: Like a radio. वेडिंग सेलिब्रेशन कॉर्पोरेट इवेंट रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
1: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait, how are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra, just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
5: गारंटेड.
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410.
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक.
7: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी.
6: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज. 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8:30 अने सांजे 7:00. टिकट बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk. सखणा जो हसबंड जी.
8: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे.
9: मैं छे ने बैक टू बैक 3 मूवीज जोई ली थी.
8: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी कियोस विद वीरज गेलानी एंड उमंग व्यास. इन द मूवी बधु ऑलराइट छे.
9: बेहतर कलाक में पाछो आई जस ने पछी बधु ऑलराइट थई जसे.
8: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून. फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियाज इंस्टाग्राम हैंडल.
10: एवू लागे छे के पिक्चर चाच.
11: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
12: 4 beers, please, garçon!
11: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
13: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
14: Leica Radio.
15: Time for another Leica Love Classic.